पीता पियों के शरारे पीछे हैं, ये सावन की रिमझिम झड़ी है, कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं ये।

लिए कुछ भी कर। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।